0: सब दे देगा, मगर पढ़ो तो सही। वैसे अब बॉस के सामने तो यूं खड़े हुए, हाथ बांध के खड़े हुए, टाई सही है नहीं है, शर्ट सही है नहीं है, कितनी परेशानी होती है कि पता नहीं बॉस किसी बात पे नाराज ना हो जाए। फाइल हाथ में सही है, रिपोर्ट सेल्स की सही है, सब सही है, प्रेजेंटेशन सही है, क्या देगा? ये वैसे भी देता थोड़ी है, देता तो कोई और है, ये बहुत वसीला होता है। अब वो जो असल देने वाला है वो कहता है आओ मेरे पास, उठो। कैसे खड़ा हूं? नमाज पढ़ रहे, यूं कर रहे, अब होता है जिक्र है, वाजिब नमाज के जिक्र में आपने अगर हाथों की मूवमेंट ही नमाज बातें ले, हाँ काम पढ़े नमाज के, आप नमाज में खो जाना शुरू कर दिया, जिक्र पढ़े या तो रुक जाएं अगर बहुत ही मुश्किल हो रही है, लेकिन मुश्किल में हो जाएगी नमाज आपकी। क्यों? खालिक है, किसी बड़ी शख्स के सामने आप कुछ हिल सकते हैं उसके सामने? वो इन अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर,
1: बेशक बेशक
0: कादिर है वो उसके सामने। इसलिए उलमाओं ने किताबें लिखी, आदाबुस सलात, इमाम खुमैनी की आप किताब पढ़ें आदाबुस सलात, कि नमाज के आदाब क्या है, दाखिल होने से पहले, नमाज में जाने से पहले। यानी इंसान तड़पे, कैसे तड़पे, कि जब उसे पता हो कि जिस गली से गुजरता है उसका महबूब दरवाजे में या खिड़की में थोड़ी देर आता है, ठीक है, अब वो उस खिड़की खुलने से पहले से गली में मौजूद होता है कि एक लम्हा जाया ना हो दीदार का, एक लम्हा जाया ना हो दीदार का, यहाँ कैसा आशिक हूं मैं, वो बुलाता रहता है मैं टालता रहता हूँ। इश्क का तकाजा तो ये है वक्त से पहले बावजू होकर जहां नमाज बिछा कर उसकी बारगाह में सजदा कर रहा
1: हूं।
0: इश्क का तकाजा तो यही है कि वो भी कहे कि हाँ देखो ये है मेरा।

देखें पहले जमाने के लोगों के क्या क्या इम्तिहान थे. I wanted to elucidate those points a little bit more, but just keeping the brevity of time in our mind too, क्योंकि मंजिल मसाइब पे भी आना है. तो कभी आप देखिएगा कि इम्तिहानात किस किस तरीके से लिए गए. और जब ये अली इब्न अबी तालिब ऐलान करते हुए नजर आते हैं, या अहल अल इराक सयुक्तलु मिनकुम सबअतु नफरिन के अस्हाबिल उखदूद, ओ पीपल ऑफ इराक, फ्रॉम यू 7 पीपल आर गोइंग टू बी मार्टेड, 7 लोगों को ऐसे मारा जाएगा जैसा कि अस्हाब उखदूद को मारा गया. द वे द पीपल ऑफ ट्रेंच they burn the people alive, likewise there will be 7 people from you that would have the same fate, that would be martyred in the same way jaise unhe mara gaya. To riwayat ke jumle hain, jab Hujr bin Adi, you have you heard the name Hujr bin Adi rahmatullahi alayh, when Hujr bin Adi was martyred with 6 of his companions, 7 people. Dekhiye Ali ibn Abi Talib ka kamal, dekhiye Ali ne ye nahi kaha kuch mare jayenge, Ali ne number bhi bata diya. Jab aap tareekh mein ja ke padhe तो 7 ही लोगों को मारा गया. एक हुजर को मारा गया और हुजर के 6 साथियों को मारा गया. जिन 6 साथियों को मारा गया उनमें से एक हुजर का बेटा भी था. आप जानते हैं पूरी कहानी क्या हुई. रिवायत के जुमले हैं, जब हुजर को मारने के लिए आए तो हुजर के गले में, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, गले में तौक है और जंजीरों में बंधे हुए हैं. तो कहने लगे, देखो मेरी जंजीरों को मत हटाना, मेरे तौक को मत हटाना, क़यामत में जब मैं अल्लाह से मुलाकात करने जाऊंगा तो इसी हालत में जाऊंगा. समझ आ गई आपको. तो रिवायत के जुमले हैं, कहते हैं मुझे 2 रकत नमाज का वक्त दो. 2 रकत नमाज का वक्त दिया. हुजर बिन आदी ने वो नमाज इतनी तेज़ी से पढ़ी, जिस तरीके से मैं क्या कहूँ, जैसे कज़ाए उमरिया पढ़ रहे होते हैं मिसाल के तौर पर. तेज़ी से नमाज को पढ़ा हुजर, इतनी तेज़ी से नमाज. कहने लगे, कहीं ये मत समझने लगना कि अली की मोहब्बत में मुझे परेशानी हो गई है. नमाज भी तेजी से इस वजह से पढ़ रहा हूं क्योंकि अली के लिए जान दे रहा हूं, तो सादत समझ के दे रहा हूं. ठीक है, माय पॉइंट वन थिंग. एंड सेकेंडली, ही लेट हिज सन टू बी मार्टेड फॉर हिज, ही लेट हिज सन टू बी मार्टेड फॉर हिज एंड देन ही गिव हिज लाइफ. जब वजह पूछी गई तो यही बताया था, मैं नहीं चाहता था कि जब बच्चा मेरा खून देखे तो कहीं ऐसा ना हो कि अली की राह से हट जाए. मैं बच्चे का खून देख सकता हूं, लेकिन अगर बच्चा मेरा खून देखता तो शायद बाबा के खून को देख के परेशान हो जाता. तो पहले जान दी है हुजर ने, तो अपने बेटे की कुर्बानी दी है और बेटे की कुर्बानी के बाद अपने आप की कुर्बानी दी. तो आप जानते हैं परवरदिगार ने हमें कितने अच्छे असलाफ दिए हैं. कभी उन्हें हुजर बिन अदी कहा जाता है, कभी उन्हें कुमैल बिन जियाद कहा जाता है, कभी उन्हें कंबर बिन हमदान कहा जाता है, कभी उन्हें रोशाइद अल हजरी कहा जाता है. मैं कितने आपके सामने मिसालें दे सकता हूँ. कभी उन्हें मीसम उचम्मार कहा जाता है. ये सब वो हैं जिन्होंने अली की मोहब्बत में अपनी जानों को दिया. जब अली की मोहब्बत में जानों को दे रहे हैं तो ना कोई परेशानी मौजूद है, ना कोई कल्क है, ना कोई और चीज़ जहन में आ रही, क्योंकि जान दे रहे हैं तो मौला की मोहब्बत में जान को दे रहे हैं. That was the imtihan, that was the test, that was the trial, that was those difficult moments that they had to go through. But at the end of the day, they were surkhru, they were successful, they were one of the thriving people for whatever imtihan, for whatever test that they gave. And same is going to apply to us too. We're going to have our imtihan too. Maybe not as severe as people before us have to go through, but those severe examples are given to you that everything we can do qurbani of, but one thing we never would be abandoning, that is our faith. That is our faith in Allah Almighty. That is our faith in Messenger of Allah Almighty. That is our faith in the wilayah of Ali ibn Abi Talib. That is our faith in the wilayah of the 12 Imams, inshallah. Yahi se baat ko agar lekar chalte hain, maine aaj jalane wali misal di, badi graphical misal thi. Lekin jab aaj jalane wali misal aapki khidmat mein de raha hoon, to ek aur misal jo hamare zehen mein aati hai azadaron, वो शाम गरीबा की मिसाल जहन में आती है. शाम गरीबा में देखें कौन सा ऐसा जुर्म था जो नहीं किया गया, कौन सा ऐसा जुर्म था जो नहीं किया गया. या अबा अब्दुल्लाह लकद अज़मत अर्रज़िया व जल्लत अल-मुसीबा बिका अलैना व अला जमीअ अहलि इस्लाम. जैसी कुर्बानी हुसैन बिन अली की कुर्बानी है, जैसी कुर्बानी आले हुसैन की है, वैसी कुर्बानी किसी और की नहीं. बस अज़ादारों, जब खेमों को जलाया जा रहा था, मैं इस हिस्से का तर्जुमा नहीं करूंगा, लेकिन मलून